0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डन, टीयर एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबार इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

जीअं वक़्तु गुज़रंदो वञे थो ऐं पंहिंजो मोकल पूरी थींदी वञे थी त परेशान थींदा वञनि था, पर ॿाहिरा हशाश बशाश हूंदा आहिनि ऐं खिलंदा आहिनि कुॾंदा आहिनि। स्कूल हुजे ॿार हुजे, जेके ज़हीन ॿारड़ा हूंदा आहिनि, जेके होशियार ॿारड़ा हूंदा आहिनि, उहे तमामु बहितर पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि ऐं कॾहिं पंहिंजे मुंहं ते, पंहिंजे मुखड़े ते, पंहिंजे गुलाब जे गुल वारे चेहरे ते कॾहिं पंहिंजी मायूसी ज़ाहिर न आहिनि कंदा। उहे गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा हमेशह स्कूल में ॿार हुजनि, नानाणे हुजनि, ॾाॾाणे हुजनि, खिलंदा कुॾंदा आहिनि। ऐं मां हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो चूंडियो आहे, अवेस गुल जे आवाज़ में आहे ऐं हिकिड़ो उस्तादु आहे जंहिंजी शायरी आहे, पाण जो गॾिजी ॿुधूं।

न त हथ जा पखा त आहिनि ई आहिनि ऐं उहे जेकी हथ जा पखा या विंजणा जंहिंखे चइबो आहे उन्हनि जी बि हिकु तारीख़ आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गुज़िरियल केतिरनि ई सदियुनि खां हथ जा पखा ख़ासि करे औरतुनि लाइ फैशन ऐं हवा ऐं रोमांस जो ज़रियो रहिया आहिनि। उहे हथ जा पखा तारीख़ में पहिरियों भेरो 1000 साल काफ़ मीम में चीन वारे खिते में शुरू थिया। रोमन ऐं यूनानी तहज़ीबनि में बि हथ जे पखे जो वजूदु मिले थो ऐं जापाननि सभ खां पहिरीं 1660 ईस्वी में जेके असांजा हथ जा पखा आहिनि उन्हनि जा जेको आहे सो उहे धारिया ऐं 1700 ईस्वी धारे उहे फोल्डिंग ऐं रंगारंगी हथ जा पखा इंग्लैंड ऐं फ्रांस में बि इस्तेमालु थियणु लॻा। उहे पखा आज पननि काठ कागज़ कपिड़े ऐं पखियुनि जे हॾियुनि मां ठाहिया वेंदा हुआ। 1796 ईस्वी में छपाईअ जी प्रेस अचण खां पोइ हथ जा पखा सस्ता बि थिया ऐं एशियाई मुल्कनि में बि मुतारिफ़ थी विया। यूरोपी मुल्कनि में बि हथ जो पखो छोकिरनि लाइ प्यार जो तोहफ़ो करे ॾिनो वेंदो हो ऐं यूरोप में हथ जे पखे खे प्यार लाइ बि इस्तेमालु कयो वेंदो हो। मसलनि का औरत कंहिं मर्द खे ॾिसी तेज़ीअ सां हथ जो पखो हलाइण लॻंदी त हुन जो मतिलबु उहे कढंदा हुआ त मां तोसां प्यार कयां थी। पर जेकॾहिं औरत मर्द खे ॾिसी आहिस्ते आहिस्ते पखो हलाए त हुन जो मक़सदु इहो सम्झो वेंदो हो त हुन मर्द सां उन औरत जी ज़रे बि दिलचस्पी नाहे ऐं हू हलंदो थिए थो। ऐं उहो आहे हथ जे पखा जेके आहिनि कुझु तारीख़ जा पस मंज़र ऐं पखनि जो जेको एतिरो ज़िक्र खां पोइ दिलि चए पई त हुमेरा पजन्ना जो लोकगीत ॿुधूं जंहिंमें आहे त सुणा तूं न वञ लाड़ पखो मां झलींदी साईं।

जी असमिन, असांजो अॼु जो सुवालु आहे, अॼु जी गुज़ारत आहे त सिंध जा समूरा शहर सुहिणा पर ज़िले ख़ैरपुरान खे मुबारकूं। तव्हां असांखे इन जो मक़सदु, इन जी माना मफ़हम तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था? असांजो जेको आहे सो फेसबुक जी आई डी आहे GFM88 जी आई डी ते तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, जंहिंखे बि सहूलियत आहे फेसबुक जी। ऐं जेके दोस्त असांजा इनबॉक्स में असांजे मैसेज करणु चाहिनि था त हुन जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे तव्हां राइट ऑप्शन में वेंदव, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, ऐं जेको मां तव्हांखे सुवालु ॾिनो आहे मुबहम में, उन जो जवाबु ॿुधाए तव्हां 888-1 ते सेंड करे सघो था। ऐं असांजे तव्हां मोबाइल नंबर ते बि असांजे पंहिंजो सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। असांजे स्टूडियो जी जेका मोबाइल आहे उहा फिक्स 10 खां पोइ आन हूंदी, तव्हां हुन ते बि असांखे ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0333-1322-88। जेके दोस्त नवां प्रोग्राम ॿुधनि पिया या जिन पंहिंजो रेडियो सेट हाणे आन कयो आहे, त असां हुनखे वरी हिकु दफ़ो सुवाल ऐं मोबाइल नंबर ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। त असांजो सुवालु इहो आहे, असांजी गुज़ारत इहा ई आहे त सिंध जा समूरा शहर सुहिणा पर ज़िले ख़ैरपुर वारनि खे मुबारकूं। ऐं असांजो नंबर आहे 0333-1322-88। ऐं समय थोरी देरि में असां वरी हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ बि हलंदासीं ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ बि हलंदासीं, वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम,
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फाई निजाम के तबाह करण जी दावा, ईरान पर आबना हुरमज पर बंद करण जो ऐलान। ईरान पर आबना हुरमज जो कंट्रोल हासिल करण जी भी दावा। कुवैत पारां ईरानी हमलन में टे सरहदी अॾा, आयल प्लेटफॉर्म तबाह थियण जो एतराफ़।

0: पाकिस्तान पारां अमेरिका ईरान विच में बीहर चिटाण वधण ते गिणती जो इज़हार बिन्ही मुल्कनि खे सबर ऐं बर्दाश्त खां कम वठण जी अपील। परडे॒ही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त समूरियूं धुरियूं चिटाण जे ख़ात्मे लाइ फौरी क़दम खणनि। धुरियूं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त तहत पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कनि।
1: अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे छंछर जे हाणे ईरान ऐं अमरीका हिकु बहितरीन मुआदे ते इतफ़ाक़ करे वरितो हो। ईरान एटमी प्रोग्राम समेत सभिनी इख़्तिलाफ़ी मामलनि तहत खणी वियो हो, पर ॻाल्हियूं ख़तम थियण जे हिकु कलाक अंदर अबन हुरमज़ में बहरी जहाज ते ड्रोन हमिलो करे ॾिनो। अमरीकी सदर ट्रंप जो ईरानी क़यादत ते बीमार ज़हनियत जो बि इल्ज़ाम। अमरीकी सदर चयो त ईरान जे चिड़ ॼाईंदड़ कार्रवाई बाद अमरीका भरपूर जवाबी कंदे कार्रवाई कंदे शदीद बमबारी कई। अबन हुरमज़ बंदि न आहे थी, सभिनी जहाज़नि लाइ खुलियल आहे।

0: गडि॒यल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पारां अमेरिका ऐं ईरान खे तकरार ख़तम करण जी अपील। एंटोनियो गुतेरेस अमेरिका ऐं ईरान ते ज़ोर भरियो त उहे ताज़िन चक्रियुनि खे रोकिन ऐं उन्हनि खे ख़तम करण लाइ ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कनि।
1: ईरान ऐं अमरीका छिकताण घटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरानी परिॾीही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि पारां विच ओभर ज़रूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार चयो त ख़िते में अमुन इस्तक़ाम लाइ सफारतकारी थी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परिॾीही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।
0: बलूचिस्तान जे इलाइक़े माशकेल में भारतीय हामी दहशतगर्दनि जो बुज़दिलाणो हमिलो। पंज पोरे शहीद सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बुज़दिल दहशतगर्दनि मासूम ऐं हथे खाली पोरेतनि खे निशानो बणायो। शहीद पोरेतनि में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन ऐं बिलाल शामिल आहिनि। दहशतगर्दनि जे बुज़दिलाणे हमिले में शहीद समूरनि पोरेतनि जो वास्तो पंजाब सां आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज़ जे इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी ऐं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां दहशतगर्दी जे मज़हमत शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हारु।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू

सिंध जो वॾे में वॾो नेटवर्क GFM 88 ऐं सामिन असांजो जेको सवाल आहे उहो आहे त सिंध जा समूरा शहर समूरा ज़िला सुहिणा पर खैरपुर ज़िले वारनि खे मुबारकूं। तव्हां सम्झी विया हूंदा, हालांकि अहिड़ो को किताबी सवाल न आहे, अहिड़ो को इंटरनेट जो सवाल न आहे, तव्हां महसूसु करे विया हूंदा, सम्झी विया हूंदा त असां खैरपुर वारनि खे छो था मुबारकूं ॾियूं। ऐं खैरपुर वारा पाण ज़रूरु सम्झी विया हूंदा, असां सां ज़रूरु कॉल ते राबितो कंदासीं। नंबर आहे 0332-1322-88 ते बि असां ॾे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघनि था। ऐं असां ॾे पंहिंजो GFM 88 जो जेको FM जी ID आहे उन ते मोकिले सघो था। ऐं इनबॉक्स में तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु 1118 ते सेंड कजो। त साईं, मुंहिंजा हर माण्हूअ जी ज़िंदगी घारण जा तौर तरीक़ा उसूल ज़ाब्ता क़ाइदा मुख़्तलिफ़ थींदा आहिनि। अहिड़ा माण्हू ज़िंदगीअ जे हर अमल में उसूलनि ऐं शर्तनि जो सहारो वठंदा आहिनि, पर प्यार जे मामले में शर्तनि ऐं उसूलनि खां कमु वठंदा आहिनि। के माण्हू वरी तवकल जे आधार ते ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि, अहिड़ा माण्हू प्यार में बि उसूलनि ऐं शर्तनि जा क़ाइल उहे वरी न आहिनि हूंदा। ऐं उहे कंहिं सां प्यार कंदा आहिनि त बि ग़ैर मशरूत तौर ते उहे प्यार ऐं पिरीअ जे हासिलात लाइ प्यार न आहिनि कंदा। उहे बसि प्यार करण लाइ ऐं ॾियण लाइ ॼाणींदा आहिनि, पोइ मोट में प्यार मिले या न, पिरी पंहिंजो थिए या न, त बि पिरी

जी साईं, मुंहिंजा इश्क ऐं प्यार दिलि जे वेस जा देस जा रहवासी आहिनि, ऐं उहे दिलि जे चवण ते ई दिलि जे पेचरनि ते विखूर खणी पंहिंजी पंहिंजी मंज़िल जा राही थींदा आहिनि। इश्क ऐं प्यार जा फ़ासिला अकुल सां न पर हमेशह दिलनि सां थींदा आहिनि, ऐं उहो ई सबबु आहे जो इश्क वारनि खे चरियो, पागल वग़ैरह वग़ैरह जे लक़बनि सां बि सॾियो वेंदो आहे। हूअं बि अकुल जे ज़ोर ते हलंदड़ सियाणा माण्हू इश्क जे आहिनि ऐं प्यार जे पे खां बि अणॼाण हूंदा आहिनि। हा साईं, मुंहिंजा प्यारु कॾहिं बि पुराणो नाहे थींदो। जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा आहिनि, तीअं तीअं वक़्त सां प्यार में बि निखार ऐं जोभन ईंदो आहे। ऐं आथम नाथन शाही जो ग़ज़ल जूं चंद सिटूं आहिनि त इश्क कुराणो नाहे थींदो, प्यारु पुराणो नाहे थींदो, जॾहिं जानी गॾु हूंदो आहे मन विगाणो नाहे थींदो।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-96-898।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: उम्मीद के दिए जलते हैं।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
6: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: दिल के किसी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

ग़ज़ल आहे अहमद सुल्तान खोसे जो, नओं यार अॼु जे शहर ज़िंदगीअ जो, नओं यार अॼु जे शहर ज़िंदगीअ जो, वरी कोत पढ़जे अख़र दोस्तीअ जो, हयाती गुज़ारण उन्हनि सां अजाई, न जे कोत सम्झे क़दुरु दोस्तीअ जो, वया जेब ॾंगिजी अथई दोस्तीअ में, उन्हनि खां पुछी ॾिसु ज़हर दोस्तीअ जो, जॾहिं के बि धोखा ऐं दलबा मिलनि था, छॾे था वञनि से नगर दोस्तीअ जो, मोहबत जी मंज़िल मिली आहे जिन खे, उहे ई था माणनि सहर दोस्तीअ जो, गनीमत सो समझो लम्हो दोस्तीअ जो, सुठो जो बि गुज़रे पहर दोस्तीअ जो, आ नियत में जंहिंजी ख़राबी न काई, आ नियत में जंहिंजी ख़राबी न काई, उहे ई था पाइनि समर दोस्तीअ जो, वॾी कामयाबी आहे सुल्तान तॾहिं, वञी हक़ अदा थिए अगर दोस्तीअ जो, नओं यार अॼु जे शहर दोस्तीअ जो, वरी को त पढ़जे अख़र दोस्तीअ जो।

जी हा साईं, मुंहिंजा अव्हां खे जेको असां इंतज़ारु कराईंदा आहियूं उन इंतज़ार घणियूं ख़तमु, ऐं हाणे तव्हां कुझु दोस्तनि सही जवाबु पंहिंजो ॾिनो आहे त बिल्कुलु खजूर आहे, ऐं खजूर जा ॾंग ॾोक आहिनि, खारकूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ जिन्सूं आहिनि खारकुनि जूं। त खैरपुर ज़िले वारनि खे असां सभिनी जे तरफ़ां GFM 88 जे नेटवर्क तरफ़ां मुबारकूं हुजनि। जेके दोस्त हिन वक़्तु खजनि में कमु कनि पिया, ॾोका लाहिनि पिया ऐं वाढी कनि पिया, ऐं उन जेके उते ठिकाणा ठहियल हूंदा आहिनि, उते छुहारा ठहंदा आहिनि, ऐं उते जेको उन जा पिड़ हूंदा आहिनि, उते जेके कमु कनि पिया, ऐं उन वटि FM असांजो GFM 88 जो नेटवर्क हले पियो, त उन सभिनी दोस्तनि खे जेके मज़दूरी कनि पिया, जेके कमु कनि पिया, ऐं जेके खजनि जा मालिक आहिनि, बटाईदार आहिनि, उनखे बि असां तरफ़ां मुबारकूं। ऐं जिन दोस्तनि मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि, जिन कुझु सही जवाब न आहिनि, उन जा नाला आहिनि मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, वसीम जरवार मीरपुर ख़ासि खां, ऐं असांजो सोराब मंगरियो, नज़ीर मंगरियो, ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो, फरहान मंगरियो, ऐं दर्द नज़ीर शेख ॻोठु सचरिणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, ख़ालिक लाशारी बि मीरपुर ख़ासि खां, रांझन कोरी ॻोठ खां, ऐं उन सां गॾु आहे लालचंद, रेहाना ख़ान बखर खां, ऐं मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली झलोरी स्टाफ खां, ऐं मोहम्मद सालिह लिगारी, लाल बख़्श बिलावल उसामा लटको मोरी खां, ऐं दिलीप कुमार, नवल राय, दानिश कुमार, सूरज गुल, शंकर लाल मेंगवाड़ ॻोठु पाबोवेरो थरपारकर खां, सलमान मेमण, कामरान मेमण खैरपुर मीरस खां, भाउ जी वॾी महिरबानी, इमदाद दायो, सैफलाए दायो लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां, मोहम्मद मूसा मेमण ॻोठु मेणा ज़िले कंबर खां, अलाह बचायो नुहाणी आहे दरपुर शाहपुर दरपुर खां, भाउ जी वॾी महिरबानी, ऐं असमा आहे मीरपुर ख़ासि खां, क़ुर्बान ख़ासि केली झंडो मरी खां, ऐं चनेसर बेहण आज़ाद बेहण मोरे खां, ऐं असांजा दोस्तनि गुल हसन शर ॻोठु अली गुल शर खां, नईम मंगरियो चक खां, ऐं अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। त कूस नगमो अव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं उहो अव्हांजे नाओ कंदासीं।

ऐं साईं मुंहिंजा ॻोठ मोल ॾिणे माशी लगवजन वारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं नंढो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अहसन फहद अहद ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाब लॻ सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, निसार जतोई, हरसाज गढ़ी कोरकाणे खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी।

जी साईं मुंहिंजा, जी साईं मुंहिंजा, प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजी मेज़बान नेमतुल्लाह जुण जो खे ॾींदा इजाज़त, हयाती रही, तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी, न त तेसि ताईं अलाह निगाह।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीका जा ईरान ते हमला जारी है। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है तो ईरानी फौजी सलाहियत कमजोर लाए ईरान ते हमलों जो सिलसिलो जारी है। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम साहड़ी रेडार वे हंधन मिजाइल्स एंड ड्रोन जखीरो कर हंधन समेत नंढन बेड़न के निशानो बनाया हुआ है। ईरान ते हमलों जो मकसद अपना हुरमस में बहरी जहाजन ते हमला रोकण भी है।
2: अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान पारा भी कार्रवाई जारी। दुश्मन के फौजी अड्डन खिलाफ ऑपरेशन तेज करण जो अजम। कोवैत बहरीन अर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डन ते हमला। पासदारन इंकलाब जो चवण है तो असां जे एरो वापसेस फोर्सिस बहरीन में शेख ईसा एयरबेस के निशानो बनाया है। अर्दन पारा ईरानी मिजाइल एंड ड्रोन्स में तबाह करण की दावा। बरतानवी नशरियाती इदारन मूजिब ईरान अमेरिकी हमलन के जवाब में गुजरियल डी का छह मुल्क में हमला कर चुको है।
1: ईरान अमरीका छिकताण में वाद का आलमी मार्केट में तेल की कीमतन जग भी कच्चे तेल के अग में 4% वाद। बरतानवी नशरियाती इदारे मूजिब ब्रेंट कच्चो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वो। अमरीकी कच्चो तेल 84.36 में फी बैरल विक्रो थे लगो।
2: ईरान जो अमेरिका ते मुस्कित में थींदड़ अपना एयरमोड्स बाबत गालियों रोकण की साजिश जो इल्जाम। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो है त छंछर वारे डी अमेरिका उमान ते दबाव विझी गालियों जो अमल रोक। इस्माइल वकाई चयो त ताज़न अमेरिकी हमलन कुछ महीनन जो सिफारती कोशिशों नाकारा बणाए छॾियूं आहिनि। अमेरिका अपना एयरमोड्स ने ईरानी इंतजामन में मुदाखलत कई जंहिं सबब न सिर्फ अदब तहफ़ुज़ वारो माहौल जुड़ियो पर आलमी व्यापारी जहाजन की अचवन भी रंडक पैदा थी।
1: शिदादपुर में माल के व्यापारी का 28 लख रुपया फोतने खिलाफ शहरन जो एहतजाज। रिंद के बाद के मानू चो तो फोरू 28 लख फुर कर फरार थी वह। पुलिस फुरचल रकम की वापसी लाए खातरी कराई पर अजा तीन वापसी ना थी। इन मुताबिक तो फुरचल रकम वापस कराए इंसाफ कर वे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मिलेगी लोड्स ऑफ मस्ती
1: ओनली ऑन
2: नेटवर्क. पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। यू आर सुनिंग चुची रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं।

पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है। और ये पूरा खूबसूरत सा साजिश आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करते हैं तो जी 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त में ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक में है, जिसमें भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बिजली खुदा खैरियत मौजूद और तवर के लिए खुदा खैरियत मतलब।

तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे Welcome into जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें क्या आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम सुनेंगे द वन एंड ओनली अली जफर की आवाज में. स्टे ट्यून्ड.

की जी. और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है डैड इज www.facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर. आने के बाद आपको मिलेगी पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग, जो कि आप करेंगे और कर सकते हैं तो जरूर करें और मेरा साथ दें पूरी पूरे 1 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

allowed in that segment. ठीक है, तो ये चीज जहन में रखते हुए गाना लेकर आना है, गाना गाना है. एंड हम क्या प्ले करें, हम एक अच्छा सा गाना प्ले करेंगे. एंड वो जो अच्छा सा गाना है वो होगा ये वाला, जिसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे.

0: वाह क्या बात है जी, क्या बात है, ऐसे गाने आने चाहिए।
1: दोस्त मुझे जब मैं बात करता हूँ तो दोस्त मुझे कहते हैं यार तेरी आवाज ऐसे बोल रही है तो बहुत बदली है, जैसे कोई बहुत बड़ा बुढ़ा बात कर रहा है, बात कर रहा है। और जब गाता हूँ तो वो बोलता है यार जब तू गाता है तो कभी आवाज कहाँ से लेके आता। मैंने कहा भाई आवाज तो है गायब गिफ्टेड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं आप, और ऐसे ही गाते रहें, और मैं तो कहूंगी कि इसको और आगे लेके जाएं।
1: जी जी मैम, और टंगटर सर भी सुना देता कि मैं रिहर्सल करूँ।
0: टंग ट्विस्टर में इस गाने के बाद सुनाऊंगी, बताऊंगी मतलब।
1: अच्छा सुनाई,
0: ठीक है,
1: सुनाओगी? नहीं,
0: आप कॉल करेंगे तो आपको बता भी दूंगी ना।
1: चलो ठीक है, सुना भी देना कभी।
0: ओके, सुना दूंगी, सुना दूंगी। अल्लाह हाफिज। अब गाना सुनाएं।

ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं. नेक्स्ट जॉइंट चेक करेंगे ये कौन होगा हमारे साथ. 03000131388. आज का टंग ट्विस्टर भी साथ साथ आपको बताते जाते हैं. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा. ठीक है, ये कहना है कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा. ठीक है जी, तो ये कहेंगे और ये जब कहेंगे जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा जी हमारे सेगमेंट को जिसका नाम होगा बोलो

0: आप कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है और 2 मिनट में हम चेक करेंगे कॉलर कॉर्नर कहाँ से होगा. हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: यार जी सईद बात कर रहा हूँ.
0: सईद है, मैं जल्दी से गाना सुना दें.
1: हाँ जी जरूर भी सुनाऊंगा. सिंधी सॉन्ग है, मतलब लास्ट में पहले आया हूँ, थोड़े टाइम बचा है, गाना तो नहीं सुन पाऊंगा मगर आपको सुना रहा हूँ.
0: ओके जी, ओके.
1: और अगले सेगमेंट में आरजी जरूर भी है गाना प्ले करना, मैं जो आपको सुना रहा हूँ ना.
0: ओके
1: जरूर भी. और गाना के बोल ये सिंधी सॉन्ग है. एको तुंजो इतर आज को एटीएट तो प्यो बुदराए नत सोनियार जी रुखसारे चैनल सखर में भला भी रखे उछाए. एको तुंजो इतर

0: ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना
1: ये सिंधी सॉन्ग आर जी सुखिन संगरानी का है, कुतों जो इस राज्य को पंद पियो तो कराए, बस उसको मैं चेंज करके आपके लिए ये
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक विदाउट एनी डिले, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीका ईरान जो इकपे ते हमलन जो सिलसिलो जारी अमरीका पारा ईरान के मिजाइल एंड ड्रोन सलाहियतन फिजाई दिफाई निजाम सामूरी रेडार साइट्स नंढन बेड़न के निशानो बणाइण जी दावा ईरान जो भी अमरीका ते जवाबी वार बहरीन कुवैत उर्दन में अमरीकी अडन ते मिजाइल एंड ड्रोन हमला बहरीन उर्दन कुवैत पारा हमलन की तस्दीक मिजाइल एंड ड्रोन फिजा में नाकाम बणाइण जी दावा पासदरन इनकलाब चयात हमलन में अमरीकी फौज अडन दिफाई निजाम के निशानो बणाए वो है।
2: अमेरिकी हमलन कुछ महीनों दौरान थियल सिफारती कोशिशन के मुकम्मल तौर से तबाह कर छो। ईरानी परे वजारत मूजिब अमेरिका अपना रमज ने खुलल तौर मदाखलत कई जै सबब खिते में अदम तहफुज पैदा थो आलमी बहरी कारोबार भी मुतासर थो। अमेरिका अपना हरमुज बाबत उमान में थीदड़ इजलास में रोको।
1: ईरान पारा अपना हरमुज बंद करण बाद आलमी मार्केट में तेल महंगो थी पो। कच्चे तेल के अग में चार सैकड़ो ताई वाद ब्रेंट कच्चो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वो। अमरीकी कच्चो तेल 84.36 सैकड़ो में फी बैरल वगरो थे लगो। अबियन मुल्कन के कच्चे में तेल में भी वाद रिकॉर्ड।
2: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन शोबान में जहनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजी अंग 76 थी वयो। पाक फौज एफसी बलूचिस्तान पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी सिक्योरिटी जरियन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजीन के हवाई जमीनी कार्रवाई जरिए निशानो बनाए पो वे। 5 जुलाई का ऑपरेशन शोबान बेन ऑपरेशन जरिए मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग 114 थी वयो।
1: फैसगंज वेझो के कत्ल कर छो। पुलिस है मामले की जांच कर पाया। इलाके वास चवन है नौजवान के पसंद परने था कत्ल किया। नौजवान कुछ अरसों पे पसंद जो परणो किया हो।

0: ਚਲਾਰ ਮੇਗਾਬਾਦ ਕਰਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੋਟ ਕਲਾਬ ਇਤਜਾਜ ਰਾਜੂ ਖਾਨਾਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇੜਾਲ ਬਨ ਗ੍ਰੰਦੜ ਹੈ ਮਨਾਖੀ ਸ਼ਾਖ ਮੇ ਪਾਣੀ ਖੋਟ ਕਲਾਬ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਇਤਜਾਜ ਕਯੋ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਜੋ ਚਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੋਟ ਸਭ ਫਸਲ ਸੜੀ ਰਹਾ ਵਾਏ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਨੇ
1: लाड़काने वेझो बिन धुरिन में जेड़ो पुलिस फरियादिन के लॉकअप करे छो मुतासरन जो एसएसपी चौक ते धरणो गोठ हुसैन भुट्टो जे रहवासी नौरतन समेत पाक किताब खणी पुलिस खिलाफ धरणो आयो मुजाहिरन मौजू बारन जी गाल तां जेड़े बाद बासरन तशद्दुद कयो पुलिस असां जा टे माण्हू लॉकअप करे छॾिया आहिनि
0: शिदादकोट में माल के व्यापारी कंफर खिलाफ शहर जो एहतजाज रिंद बरादरी के मान फुर वाक्य खिलाफ मुजाहरो मुजाहरीन फुर वाक्य के वी ढी गुजरी वह पुलिस अजा तक कुछ भी ना कर जवाबदार गिरफ्तार कर फुर कल रकम वापस कराई वे
1: गड़ी खेरो में नव महीना अग लाड़काने की अस्पताल मां मुबैना तौर गुम थियल शागिर्द सैयद अब्बास शाह की बाजियाबी लाए वारसन जो एहतजाज मुजाहिरन जो सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो मुजाहिरन मौजूद शागिर्द के लाड़काने मां गुम कयो वियो आहे नव महीना थी विया आहिनि पुलिस कुछ न करे रही आहे नौजवान के बाज़ियाब करायो वञे।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

0: केस दाखिल हुजण बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ़्तार न पई करे, नोटिस वरितो वञे। अहम ख़बर आहे जेका
1: काम नहीं है कोई काम नहीं है आपको, मेरा शो सुनती रहती है। हैं
2: यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों सुनती हूँ।
1: अच्छा
2: मेरा क्या वास्ता था तुम?
1: क्या वास्ता, मतलब आप चाहती हैं कि आप मेरा शो ना सुने? कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। अच्छा छोड़े सब, ये बताएं टंग ट्विस्टर सुना है, भूलेंगी?
2: पहले बताऊं क्योंकि मैं कॉल लगाने में मस्त थी, तो शायद सही सुना है या नहीं सुना है, एक बार बताऊं।
1: मैं रिपीट करूं?
2: हाँ।
1: कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा।
2: ओके, कोमल ने कंगन को
1: कपड़े में हाँ कपड़े में कसकर बांधा।
2: ओके, कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा।
1: ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा हाँ बहुत अच्छा कहा, और कुछ कहना है? कहे ना,
2: क्या करूँ,
1: सोच में पड़ जाती है क्या कहें। चले कुछ नहीं कहना,
2: रोज रोज तो तारीफ नहीं कर सकती ना मैं
1: आपकी। रोज रोज तो तारीफ नहीं कर सकती। हाँ रोज रोज कर लें, किसको बुरी लगती है तारीफ किसको बुरी लगती है तारीफ बताएं ना। चले ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ कबूल। ऐसे ही कॉल करती रहूँ मुझे ताकि मैं आपको तंग करती रहूँ। वैसे ये है कि अगर मैं तंग करने पे आऊँ तो मैं बहुत बुरा तंग करती हूँ, बहुत बुरा इरिटेट करती हूँ। और इस बात की खुशी सिर्फ मुझे होती है, सामने वाले को नहीं होती। उसको तंगी होती है, उसको इरिटेशन होती है। तो ये भी एक टैलेंट है आप में है। चलें फिर सबको तंग करते हैं मिलके। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, कोई है? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
3: शाजिया बात कर रही हूँ, लाहौर।
1: शाजिया कैसे हो?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ शाजिया। और प्रोग्राम सुनती है?
3: जी हाँ सुनती हूँ।
1: कैसा लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है, आपका शौक से सुनती
1: है। शौक से सुनती है, बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाए, भूलेंगी?
3: एक बार बताएं।
1: एक बार बताऊंगी। अच्छा सुनिएगा गौर से। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा।
3: कोमल ने कपड़े में कंगन को कसकर बांधा।
1: पहले सुने तो सही गौर से, ऐसे तो खुद ही उलझ जाएंगी आप, समझ के सुने ना। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा।
3: कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा।
1: हाँ ऐसे।
3: कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा। कोमल ने कपड़े में
1: कोमल ने
3: कंगन को कसकर बांधा।
1: आप तो खुद ही फंस गई हैं कपड़े में। अच्छा और कुछ कहना है शाजिया
3: जी?
1: और कुछ कहना है क्या
3: जी? आपका शो अच्छा है, आप बहुत अच्छा करती है, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है।
1: थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं।
3: थैंक यू सो मच
1: शाजिया, अल्लाह हाफिज़। जी इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और कॉल करने के बाद एक अदर टंग ट्विस्टर कह के दिखा

ओगी जी, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं और हमें मैसेज कर दिया है गुड मॉर्निंग, हाय आरजे, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली बलोच फ्रॉम कराची, वेलकम टू द शो अल्ताफ अली। मौसम कैसा है कराची?

0: ਸਾਰੇ ਬਰਾਵੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ.
1: ਓਕੇ, ਵਨ ਮੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ. ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਹਾਂ ਸੇ?
2: कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा.
1: रुक जाएं, रुक जाएं, कौन बात कर रहे हैं?
2: एस आर एच.
1: ये तो बड़ा अच्छा आपने कह दिया, एकदम से आते साथ याद कर रहे थे आप,
2: प्रोग्राम सुन रहे थे आपका,
1: रट्टा लगा रहे थे, कुछ और बोलते तो भूल जाते. ऐसे ही होता था ना कि बचपन में हमें जब कोई लेसन दिया जाता था याद करने के लिए, टीचर देती थी, तो हम रट्टा लगाते लगाते जाते थे. हम टीचर को कुछ और नहीं कहते थे, हम कहते थे सुन ले, जल्दी सुन ले, इससे पहले कि हमारा रट्टाफिकेशन खत्म हो जाए. अच्छा, वेरी नाइस. और कुछ कहना है?
2: बस आपका प्रोग्राम सुनने अच्छा लग रहा है.
1: ओके, आप सुनते रहे, ऐसे ही इंजॉय करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, ठीक है?
2: ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज. और छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड.

0: समझिए। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865453।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: मेरा फ्रेंड वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

ओके जी, तो आज के जो विनर्स हैं वो हैं SRH और दुआ कवल. SRH और दुआ कवल ने बहुत अच्छा टंग टिश्यू बोला और ये दोनों आज के विनर हैं. और इसी के साथ हम लास्ट में लास्ट रखे कॉलर्स को भी इंटरटेन करेंगे जो कि आप लोग हमें करेंगे कॉल 03000113488 के ऊपर. हम कॉल लेने जा रहे हैं और कॉल लेने के बाद हम चेक करेंगे लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे.

0: इसी के साथ लास्ट वाला की कॉलर हम लेते हैं और चेक करते हैं कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, लास्ट वाला की कॉलर है, आज की अच्छी बात बताइए।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की अच्छी बात है और लकी कॉलर भी बिल्कुल यकीनन हो। और ये बात है, जो भी आज की काम करो दयानतदारी से करो और सच्चाई से करो, और जितना भी हो सके आप किसी की खिदमत करो, किसी के काम आओ, अगर आपके काम आने से किसी की हेल्प हो सकती है तो फिर आपको ये कुछ नसीब है। और धोखे और फ्रॉड से यार की जितना हो सके तो बच्चों, सभी सुनने वालों को कहूंगा और सब किससे मिलने से मिलो कि आपकी खुशी से कोई भी किसी का दिल खुश था है तो आपके लिए ये सदका जारिया हो जाएगा। क्योंकि आज ये आजकल देख रहे हैं दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, दिनों दिन बदलने, हर कोई नफ्ता नफ्तियात में लगा पड़ा हुआ है और हर कोई तेजी का दौर हो गया, अपने काम काज में लगा पड़ा है। ऐसे लोग कम रहेंगे जो किसी काम आए और किसी की खिदमत कर सके। हर जी
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजी, सुनना मत भूलिएगा। जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: अमरीका ईरान जो इतफ़ाक़ हमलों जो सिलसिलो जारी है, अमरीका पारां ईरान जी मिसाइलन ड्रोन सलाहियतन फिजाई दिफाई निज़ाम सामूरी रेडार साइट्स ऐं नंढनि बेड़नि खे निशानो पाइण जी दावा। ईरान जो बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन ऐं कुवैत उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिसाइल ड्रोन हमला। बहरीन उर्दन कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक। मिसाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणण जी दावा। फाज़दारा इनकलाब चयो आहे त हमलनि में अमरीकी फ़ौज जे अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।
1: अमेरिकी हमलनि कुझु महीननि दौरान थियल सिफारती कोशिशनि खे मुकमिल तौर ते तबाह करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमेरिका अपना हरमुज़ में खुलियल तौर मुदाख़लत कई, जंहिं सबबि ख़िते में अदम तहफ़ुज़ पैदा थियो ऐं आलमी बहरी कारोबार बि मुतासिर थियो। अमेरिका अपना हरमुज़ बाबति ओमान में थींदड़ इजलास बि रोकियो।
0: ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर सब्र ऐं सहब करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते कदम खणण ऐं इस्लामाबाद जे वफ़ामदी यादाशनामे ते अमल कंदे सफारतकारी खे तरजीह ॾियनि।
1: ईरान पारां आबना हरमुज़ बंदि करण बाद आलमी मार्केट में तेल महांगो थी वियो। कचे तेल जे अघ में 4% ताईं वाध। ब्रेंट कचो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वियो आहे। अमेरिकी कचो तेल 74.36% फी बैरल विकिरो थियण लॻो। ॿियनि मुल्कनि जे कचे तेल में बि वाध रिकॉर्ड।
0: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। वधीक 5 खारजी दहशतगर्द वाजी विया। ऑपरेशन शाबान में जनम भीड़ो थींदो। दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग 76 थी वियो। पाक फ़ौज एफ़सी बलूचिस्तान पुलिस जो कयल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रनि मूजिबि ऑपरेशन दौरान खारजनि खे हवाई या ज़मीनी कारवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 114 थी वियो।

वजीर आजम शहबाज शरीफ एक डी के दौरे ते कतर पहुंची वो। वजीर आजम कतर के अगोड़े अमीर शेख हमद बिन अलसानी के लाडाने ते शाही खानदान सा ताजियत कंदो। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीर सोहावा में

0: जवाबदार मोहम्मद जाफरी जी जमानत वारी दरख्वास्त रद्द कंदी। अदालत जवाबदार मोहम्मद जाफरी के फौरी तौर पुलिस तहवील में देने जो हुक्म जारी कयो। जवाबदार खिलाफ साइट थाने ते ज्यादती केस दाखिल है।
1: घड़ी खेरो में नव महीना अग लाड़काने के अस्पताल में मुबैना तौर से गुम थियल शागिर्दयानी शागिर्द सैद अब्बास शाह की बाजियाबी लाइ वारसन जो एहतजाज मुजाहरीन जो सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। मुजाहरीन मूजिब शागिर्द के लाड़काने में गुम कयो वियो आहे। नव महीना थी विया आहिनि, पुलिस कुछ न कर रही है। नौजवान के बाजियाब कराए वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: ਜਿਸਕਾਣੀ
1: 03013992836।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
4: का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। तो आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक का साथ। तो 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, इतनी सारी जो है ना वो बातें करेंगे, मजे मजे के गाने सुनेंगे और आप लोगों को व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली, सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाद के साथ। तो बहुत खूबसूरत सी नाद सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और इसी के साथ साथ पहले तो आप लोगों को जो चीज बताने वाली है वो ये कि भाई जान व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स तो कितने सारे और कितने अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। तो जनाब जी बताइए जरा, आप जो है वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि काफी टाइम हो चुका है आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को कितने सारे फायदे मिलते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने हमें पहली मरतबा सुनना स्टार्ट किया है, या फिर जिन लोगों का आज पहला दिन होगा प्रोग्राम में, उनको भी वेलकम करते हैं और साथ ही साथ उनको भी बताते हैं। जनाब अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना, मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती चलूं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये भाई एक नाइट क्रीम है। अगर बहुत से लोग हैं जिनकी भाई ब्यूटी जो है उनको ये कहती है कि हमारी अब स्किन को जो है ना जरूरत हो चुकी है नाइट क्रीम की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नाइट क्रीम लगाना पसंद नहीं होती। और वजह कुछ यूं होती है कि भाई आप लोग जो होते हैं, आप लोगों को ये पता होता है कि भाई जो नाइट क्रीमें होती हैं वो या तो आपकी स्किन को खराब कर देती हैं या तो फिर वो जल्दी में अगर आपको गोरा बना देंगी तो उसके अंदर केमिकल्स होंगे। तो इस तरह का अगर सीन आपके जहनों में भी है तो ये चीज आप लोगों को बताएंगे कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और बात आती है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए प्रोडक्ट है। जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और इस तरह के नेचुरल अज़ा जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जो है वो बढ़ाएंगे और आपकी स्किन को जो है वो हमेशा अपनी असल जो है ना वो हकीकत में आप लोगों को ऐसा होगा कि अगर आपकी स्किन जो है वो पहले अच्छी होती थी, पहले गोरे होते थे, आप लोग वक्त के साथ आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल थी, डल हो चुकी है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, आपके चेहरे पर निशानात बढ़ चुके हैं, आपके चेहरे पर जो है ना आंखों के हल्के बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर जो है ना जितने प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन जो है वो जनाब इन तमाम साइड इफेक्ट से आपको पाक रखेगी और आपकी स्किन हमेशा आपको फ्रेश बनाए रखेगी, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और नाइट क्रीम है तो इसी जाहिर सी बात है आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एश का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम सोप लगाते हैं, तो अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है, इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर जो है ना जितने प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन जो है वो जनाब इन तमाम साइड इफेक्ट से आपको पाक रखेगी और आपकी स्किन हमेशा आपको फ्रेश बनाए रखेगी, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और नाइट क्रीम है तो इसी जाहिर सी बात है आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एश का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम सोप लगाते हैं, तो अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी सोप एवोकाडो तो आपके चेहरे पर जो है ना जितने प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन जो है वो जनाब इन तमाम साइड इफेक्ट से आपको पाक रखेगी और आपकी स्किन हमेशा आपको फ्रेश बनाए रखेगी, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और नाइट क्रीम है तो इसी जाहिर सी बात है आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एश का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम सोप लगाते हैं, तो अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है, जो स्किन को जो है ना वो फेयर बनाने के लिए आगे दिन के जो है ना जितने भी काम आप करते हैं, या फिर दिन में अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास मेकअप का टाइम नहीं है या मेकअप आपको सूट नहीं करता, तो व्हाइट एश लवली क्रीम बस थोड़ी सी मिकदार आप अपने स्किन के ऊपर लगा लेंगे और आप रेडी हो चुके होंगे। और उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम की आप लोगों को जरा तफसील के साथ बात बताऊं, तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस के साथ तैयार किया गया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको 30 विटामिंस के कैप्सूल मिलते हैं, यानी कि इसे तैयार किया गया है तो इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है
प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और उसी के साथ साथ बात यहीं पर खत्म नहीं होती जनाब, व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि अगर आप ब्यूटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये वाला भी सीन बन जाता है कि आपको नहीं पता कि भाई हम जो है ना वो सन से किस तरह अपनी स्किन को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अगर आप बाहर निकलते हैं गर्मियों के मौसम में तो धूप के जो असरात है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आपको धूप के असरात से भी बचाएगी, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड है जनाब। तो आप बस बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम आप सारे लोगों के लिए है। तो ये बहुत ही एक अच्छा वाला प्रोडक्ट है, जैसे आप, मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग ये ट्राई करके देखें ताकि आपको पता चले कि वाकई मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा होते हैं, दानों का मसला आपके चेहरे पर है और दाने अगर आप अपनी स्किन पर भगाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करना होगा। और ना सिर्फ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आपके चेहरे के दानों को खत्म करता है, बल्कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात आ जाते हैं या एक्नी किसी भी साइज का हो, ऐसा सोचते होंगे कि भाई ये क्या नॉर्मल एक्नीज के लिए, तो ऐसा नहीं है। हर तरह के एक्नीज को खत्म करने के लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, एक्स्ट्रा ऑयल हो, या फिर आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के निशान भी अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करके आप इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाएंगे तो आपकी स्किन बेदाग, गोरी और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब को लगाने के तरीकेकार अगर आप लोगों के साथ शेयर किए जाए, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब को आप सुबह में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि दो दफा आपने लगाना होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्रीम एक मरतबा लगाते हैं, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप नाइट क्रीम है तो रात के टाइम लगाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है इसे आप सुबह में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे। हो सके अगर एक्नी कुछ ज्यादा ही है तो आप तीन मरतबा लगाएं, नहीं तो भाई दो मरतबा जो है वो काफी होता है। तो सुबह को अगर आप इस्तेमाल करें तो अपने कामों से फ्री हो जाएं, उसके बाद अपना फेस वॉश करें, अच्छे से अपने फेस को क्लीन करें, और उसके बाद क्या करें जी, हाथों को भी अच्छे से क्लीन करें, और उसके बाद डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, जहां जहां एक्नी है, जहां जहां निशानात, जिन जिन चीजों को आप खत्म करना चाहते हैं वहां पर लगाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के बाद फिर से फेस वॉश कर लीजिएगा। रात को भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल यही तरीकेकार है, इसे फॉलो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल जी आजमाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, और आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अवेलेबल कराएंगे जनाब, उसके लिए आप डायल कीजिएगा 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-95। बिल्कुल जी ही नंबर आहे जेको तव्हां जे आसानी जे लाइ आहे, अगर तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा त इहो नंबर तव्हां खे लास्ट में डायल करणो पवंदो। नंबर खे तव्हां जेको आहे न डायल कयो, कॉल कयो या मैसेज कयो, हुननि खे ॾसियो बाबा साईं त तव्हां फलाणी जॻह खां आहियो ऐं तव्हां जे एरिया में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन मिलनि पिया, ऐं कोन मिलनि पिया, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे अवेलेबल कराए छॾियो जीअं तव्हांखे आसानी थिए ऐं तव्हां वठी सघो।

आओ बेटी, आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि गर्मी में सबसे लॉयल चीज आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है? गर्मियों में तो वैसे हर किसी के ऊपर जो ना हमें शकी हो रहा होता है लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में गर्मियों में सबसे लॉयल चीज क्या है? ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए 888 और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते रहिए, और इसी के साथ साथ फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करिए।

जी तो यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा हमारे साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं तो सर आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। ये हमारे साथ है दादू खान इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई भाइयों को वेलकम करते हैं जी। और दादू का हैदरी फारूक हैं, हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर का प्ले कीजिएगा कब्र ते लिखी सजो। ओके भा मां कोशिश कयां थी तव्हां जो गानो हलाईंदासीं। उन खां अलावा मीरपुर खां अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ ही मीरपुर खां अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तो नाइस है, अब आप हमें गाना सुनाइए शमन का। बिल्कुल जी आपको शमन का गाना सुनाते हैं। और गोठ नबीदाद बम्बरो नारो, अच्छा नबीदाद बम्बरो नारी खां इमाम डिनो बमरू भाषा से अगर मौजूद आए तो मबतू प्यारे भाजू मैसेज एतरो कयो आ या मिसिंग पार्ट अची वयो आहे।

ओके जी, ये हमारे साथ हैं, क्या हाल है सिडो जानी, आई एम हैप्पी गर्ल। ओके जी, हैप्पी गर्ल हमारे साथ हैं, हैप्पी हैप्पी, और कहती हैं 3 साल के बाद आपकी आवाज सुनी है, सच्ची बताऊं बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच हैप्पी, आपको वेलकम करते हैं। और कहती कल लाहौर से वापस आई हूं और आज ही आपका शो ज्वाइन किया है जानी, थैंक यू थैंक यू। और लिखती है कि मुझे लगा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप बताएं जरा, आप क्यों इतना टाइम गुम सुम सी रही और ऐसे गई कि 3 साल लगा दिए। और आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया वापसी आने पर। और नाजिश हमारे साथ है, नाजिश फ्रॉम लारकाना, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आप ही 4 साल के बाद मैसेज कर रही हूँ, प्रोग्राम जो भी हो आप होती हैं तो 14 चांद लग जाते हैं प्रोग्राम को। अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करेंगी, हाय हाय दिल ले लेंगी। एक ही दिल है मेरे पास। अच्छा ये मौजूद है हमारे साथ, गुड इवनिंग, हाय सिद्रा जी, हाय टू यू, और कैसी हैं आप, आपका शो बड़ा अच्छा है। और आप हमारे साथ हैं, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके अल्ताफ, आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया के साथ साथ। ओके जी, ओके लैला, और बहुत सी लड़कियों का नाम भी लैला होता है, तो जो लैला नाम की लड़कियां हमें सुन रही हैं, क्यों भाई बताओ जरा। ओके जी, लैला से कुछ पूछना चाह रहा था, ये चलें जी पूछ लिया होगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है, तो मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। और मुझे बताइए कि गर्मी में आपको क्या लगता है, कौन सी चीज ज्यादा लॉयल है।

ओगरी सो छन्नो की आंख में एक नशा है और गाल पे उसके तिल का निशा है। आय हाय ओके जी, मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है। कहते सलाम अदीब, वालेकुम अस्सलाम अदा, छाला खुश आयो। प्रेमचंद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है।

क्या भाव है, शन्नो तो लश्कारे मारेगी क्योंकि शन्नो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो लगा रही है। तो अगर आप भी लश्कारे मारना चाहते हैं, अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए ना। ओके जी, गफार खान चाचड़ हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं, शोला जवाब है, वेरी नाइस। और गफार खान चाचड़ गोटकी से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, इस जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। समान भाई लगते हैं कि बहुत सारी चीजें फायदेमंद हैं, उनमें कुछ ये भी हैं। चलें चलें, ये सही हो गया। और कहते हैं अगर टॉपिक फनी आंसर दिया जाए तो किसी की यादें जो गर्मी का एहसास मिटा देती हैं, सच्ची में। मैं भी ट्राई करके देखूंगी, क्या पता मेरी भी गर्मी कहीं दूर हो जाए। और उसके अलावा अवेस, अब्बास सोलंगी और सरफराज हैं। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जावेद अली रिंद हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ, वेलकम जी वेलकम। ओके जी, आदिल आपको गाना सुनाएंगे और कहते हैं सिंधी में टॉपिक रिपीट करें। अच्छा टॉपिक सिंधी में यो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त गर्मी में तव्हां खे छा थो लॻे त कहिड़ी शइ जेका आहे उहा ज्यादा तव्हां सां सची आहे। लॉयल जो मतिलब हूंदो आहे खैर ख्वाह, सचो, बावफ़ा। तव्हांखे छा थो लॻे गर्मी में उहा कहिड़ी शइ आहे जेका तव्हां सां सची आहे? तव्हां ॾिठो हूंदो त बिजली बि धोको ॾेई वेंदी आहे, इलाही सारियूं चीज़ूं आहिनि जेके गर्मी में धोको ॾेई वेंदियूं आहिनि। असां चवंदा आहियूं अई कहिड़ी शइ हुजे जेका गर्मी में असांखे सफ़ा धोको न ॾे। सो तव्हां ॿुधायो तव्हांजी नज़र में कहिड़ी आहे। हुन खां अलावा सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं। जी मैं ठीक हूँ सरफराज, आप बताएं आप कैसे हैं, गोरजा से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जी मोहम्मद ताहिर लुंड हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं। और फराज अली बिरोही आ चुके हैं, गुड शो, थैंक यू।

0: हजार भाई कहते हैं टॉपिक एसी एसी वफादार होते हैं, धोखा दे देती है भाई और एसी तो कुछ ज्यादा ही धोखा देती है। तो अभी जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और उसके अलावा बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास मौजूद है बहुत ही अच्छे वाले प्रोडक्ट और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छी वाली क्वांटिटी के साथ साथ आपको मिल रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे हर तरह की स्किन के मुताबिक तैयार किए गए मर्द हज़रातों ख़वातीनों सारे लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: जीए एफएम 88
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

अमरीका ईरान जो एकपे ते हमलन जो सिलसिलो जारी है। अमरीका पारा ईरान के मिजाइल और ड्रोन सलाहतन फिजाई दिफाई निजाम सामूडी रेडार साइट्स नंढन बेड़न के निशानों बयान की दावा। ईरान जो अमरीका जवाबी वार बहरीन कुवैत उर्दन अमरीकी अरन मिजाइल ड्रोन हमला बहरीन उर्दन कुवैत पारा हमलों की तस्दीक मिजाइल और ड्रोन फिजा में नाकाम बयान की दावा। पाजरान इनकलाब चाहिए हमलों में अमरीकी फौजी अड्डन दिफाई निजाम के निशानों बनाया व्यवहार है।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज

0: पुछन में जीए मीरापुर एफएम 94 ई हले थो मु पेंजो दुकान खोलियो त एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
0: ऑफिस जीए मीरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।
4: सर, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोर और बिल्कुल खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को तो पता चल गया कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या काम है, और अगर आप लोगों को बताया जाए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना है, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनाब, अगर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा वाली बातें ऐसी हैं जो कि आप जाने तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप अपनी ब्यूटी के बारे में जानेंगे, खूबसूरती किस तरह बढ़ाएंगे और खूबसूरती को बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है, ये चीजें अगर आपको पता चल गई ना, तो फिर उसके बाद ये होगा कि आप लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून से रह पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाए बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और देखा जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स वो काफी ज्यादा हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। टीनएजर्स की जिंदगी अगर देखी जाए तो उनके चेहरे पर इतने ज्यादा मसले आ जाते हैं, या फिर देखा जाए तो वो खवातीन जो कि भाई अपना ख्याल नहीं रखती, और ख्याल ना रखने की वजह से उनकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इन तमाम तरह मसलों को देखा जाए तो आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप लगाएं और आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे, और आप लोग मुतमिन भी रहें कि भाई हमारे पास जो है ये फलां प्रोडक्ट मौजूद है और इस प्रोडक्ट के होते हुए हमारी स्किन खराब नहीं हो सकती। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक इतना अच्छा और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसका मैं आप लोगों को डिटेल के साथ अगर बताऊं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है जैसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और डी स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम है। सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, दो दिनों में आप लोगों को नतायज जो है वो बेहतरीन वाले मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जदीद अज्जा मौजूद है जैसे ये जनाब अल्फा आर्बुटीन, ओजिक एसिड, ग्लूटाथायोन से भरपूर ये क्रीम है, रात भर काम करती है ताकि आपकी जल्द जो है चमकदार बनाई रहे, और उसके अलावा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा डल हो चुकी है, इन तमाम तरह चीजों को भी कम करती है, और आपके चेहरे की स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। आपके चेहरे की अंदर तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने में जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहले नंबर पर है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे, आपके चेहरे पर जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाएगी, आपकी स्किन जो है वो नेचुरली आपको लगेगा कि भाई वाकई फर्क आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, हमने बहुत ट्राई किए हैं लेकिन मार्केट में कोई भी हमारी टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलता ही नहीं है, तो आप एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो जिल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद देती है। अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो जी आपकी जल्द जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आपके चेहरे की स्किन हमेशा आप लोगों को लगेगा कि भाई मॉइस्चराइज है और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। और चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और जनाब हमेशा ग्लो करते रहिए। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश की बात करें तो डी स्किन फेस वॉश हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है और जनाब मॉइस्चराइज रखता है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को डीपली एहसास होगा कि वाकई आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट का इंतखाब कर चुके हैं। क्योंकि अक्सर मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं लेकिन प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, या फिर अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत महंगे मिल रहे होते हैं कि आप अफोर्ड ही ना कर सके। लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और उसके साथ साथ ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनका ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है। लगाने की तरीकेकार बिल्कुल जी वही है जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे। बिल्कुल लगाने से पहले जो है ऐसा किया करिए, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं तो लगाने से पहले आपने अपना फेस वॉश करना है अच्छे से। पहले ना आप अपना फेस वॉश किया करें, चेहरे को क्लीन किया करें, उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अप्लाई कर दें। ओके हो गया। ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमें ज्वाइन करते रहिए। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और उसके अलावा आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके जी, सो गाने हम आप लोगों के लिए लगाते रहेंगे। साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03 15 799 0595 4315 79 5095।

आज के प्रोग्राम में टॉपिक की बात की जाए तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है गर्मी में सबसे लॉयल चीज क्या होती है, क्योंकि गर्मी में मुझे ये लगता है कि जिसे भी देखें जहां भी देखें तो हमें लगता है कि भाई ये चीज तो हमें धोखा दे ही देगी। लेकिन आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है गर्मी में सबसे लॉयल क्या है।

ओके जी, आपकी मैसेजेस की जाने बात है तो यहाँ पर साइमा मीर हमारे साथ मौजूद की थी। अस्सलाम वालेकुम सिंची सदा बहार आज सिद्रा मुस्कान की आयो अजवरी अल्लाह यो भला छो और कैसे ये कहती हैं कि प्रोग्राम सफा भलो आज टॉपिक बारिश और अपने हाथ की बनी हुई चाय। क्या बात है जी, क्या बात है, आप इतनी अच्छी चाय बना दी है। और ये हमारे साथ हैं जी हैप्पी गर्ल, कहती हैं सिटू जानी वैसे ही हो, चेंज नहीं हुई है आप। हाँ भाई असां तो बिल्कुल उई आयो, तमाम तो चेंज ना हो न थे। और कहती है मंगनी हो गई है, किसकी, तुम्हारी या फिर मुझसे पूछ रही हो तो चलेंगे अगर आपकी हुई है तो आपको मुबारक, मेरी अभी तक नहीं हुई है। और ये हमारे साथ हैप्पी कहती हैप्पी सिद्धू जानी मैं फैमिली के साथ आपका शो सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपको और आपकी पूरी फैमिली को वेलकम कहते हैं जनाब। और दादू खां इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, के फातला जतोई भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ बलोच जाग जानी चाचू हैं, कहते हैं प्लीज प्ले अनवर विस्तरो ना कैद करो मेकून डेडिकेट अज़रा को सो जोजी बलोच एंड यू। ओके चाचू कोशिश करते हैं आपका गाना लगाएंगे। और कहते हैं अच्छा दूसरा मैसेज किया कि अगर वो गाना ना हो सके तो ये सेकंड गाना आपने लिखा है और ठीक हो गया जी। कहते हैं कि डेडिकेट डॉक्टर नजमा तबस्सुम, डॉक्टर समीना आमिर एंड यू। चलें जी ठीक है, इन दोनों गानों में से कोई एक गाना लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और उसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और हैप्पी कहती हैं कि सिद्धू जानी मेरी बुआ सीमा भी आपका शो शौक से सुनती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच सीमा का भी और आपका भी, और उसके अलावा आप दोनों को वेलकम करते हैं। अच्छा, कमेंट्स की जाने बातें हैं, तो आज ये कमेंट्स वाले लोग हैं कहाँ भाई? ये सारे लोग आज मुझे इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, क्या हाल चाल हैं, आपका शो सुन रहे हैं। हमारी अच्छा हमारी फैमिली रुखसार मरी मीरपुर खासी हमारे साथ है। ओके जी रुखसार मरी, आपको वेलकम कहा जाता है, और आप ओएसटी सुनना चाहते हैं, ओएसटी आपको ये वाला लाजमी सुना देंगे, मेरा भी फेवरेट है तो हम जरूर सुनेंगे। और मूसा कोरी कहते हैं जवाब अधि पखो आपको चलें जी, अच्छी बात है।

ओके जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुना, एक और ब्यूटीफुल गाना शमन अली मिराली की आवाज में हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो जिन भाइयों ने शमन के गाने की फरमाइश करी है, ये गाना उन सबको डेडिकेट जाता है। रेहान अली कहते हैं, सलाम, कैसी है नंडी माई, नंडी माई सफा ठीक है, ता बता की आयो। ओके जी, गुलाम फरीद बलोच हैं, कहते क्या हाल है जनाब, तबीयत कैसी है। मैं गुलाम फरीद जागरानी बात कर रहा हूँ सांगी से जनाब, और सारे लोग आप चाय पियेंगे प्लीज सॉन्ग सुना दीजिएगा मुमताज मलाई का। मुमताज मलाई अभी गा कर गए हैं, आपने सुना होगा गाना उनका, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। और चाचा खाले चुनी जो कहती है, अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं आप और आपके प्रोडक्ट दोनों खुशबाश। जी जी बिल्कुल, सब मजे में है। आप बताएं आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इरादा किया हुआ है अभी तक। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों के स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किए गए प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स अगर आपको ऐसा थोड़ा सा शक हो ना कि भाई ये प्रोडक्ट तो हम कैसे ही लगाएं क्योंकि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के बाद आपकी खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि आप इतना ग्लो करेंगे, इतने सारे मसले जो भी आपके स्किन के साथ मौजूद है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद, लास्ट में ट्राई करें।

मोगरी चाचा क्यों आप अपने कमेंट्स को डिलीट करते जा रहे हैं भाई, पढ़ने तो दे मुझे। और कहते मोलाई सही तो चवे, बिल्कुल सही पे चवे मोलाई, वाकई लगे पयो मुखे भी। आदल लिखते हैं कि कुछ लोग दलील से नहीं मोहब्बत भरे लहजे से जीत लिए जाते हैं, मुझसे बातें करके देखो मैं बातों में आ जाता हूँ। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और अनवर भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं कि खुद पर सबसे ज्यादा फखर तब महसूस हुआ जब इम्तिहान में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से उस्ताद ने कहा सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। हाँ भाई, ये मोमेंट बड़ा जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आप कैसे हैं, ठीक ठाक?

मेरे किशोर भाई कहते हैं सफर में आई हूँ, दुआ में याद रखिजो। बिल्कुल बिल्कुल, ओ हेड़ी सारी दुआ तमाम जलाए, अल्लाह से खैर से तमाम जो सफर गुजारे आई तमाम खैर से पानी मंजिल ते पहुंचो। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन और वाइट एज के प्रोडक्ट्स लॉयल विद ऑल ऑफ अस योर टॉपिक आंसर। ओके कितनी अच्छी, देखो चाचे ने बात कर दी है। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती के साथ लॉयल बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप क्रीम से थोड़ा अवॉइड करते हैं तो आप पहले फेस वॉश ट्राई करें, उसके बाद आप क्रीम लगाएं, ठीक है। अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा यू मिस मी आई एम हिड की अचिंग। यस यस मिस कयां पई वाके। अनवर भाई कहते हैं अदी यो तव्हां जेको सवाल पुछा भी मोटी अची ॿुधायां थी तव्हांखे। टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हां ने मोटी चवंदा तव्हां करी न वञो इते वेठा हुजो सफ़ा मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटां थी। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाती रही और खूबसूरत हो।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से. आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो बिल्कुल जी, अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जनाब, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तो तैयार किए गए हैं ना. अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये प्रोडक्ट कितने अच्छे और कितना अच्छा आप लोगों को रिजल्ट्स देने वाले हैं. तो जनाब, अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर लगाइएगा. लेकिन साथ में एक और बात भी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं ना तो उसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. और उसके अलावा डी स्किन फेस वॉश है जो कि आप भाई फेस वॉश तो जानते ही हैं कैसे और क्यों आप लगाएंगे. तो फेस वॉश इतना जबरदस्त है ना, जब डी स्किन फेस वॉश की मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी बात बताऊं तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ये इतना क्रीमी है और ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन इतनी क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है और क्लींज हो जाती है. उसके अलावा हाइड्रेट भी आपकी स्किन को रखता है और साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है. अलग से ये तमाम चीजें लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो बस आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी. और अगर डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बताऊं तो आपने इस्तेमाल करना है तो
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बस
0: अलावा हाइड्रेट भी आपकी स्किन को रखता है और साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है. अलग से ये तमाम चीजें लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो बस आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी. और अगर डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बताऊं तो आपने इस्तेमाल करना है तो जनाब, इस्तेमाल आप 2 से 3 मरतबा किया करें, यानी कि सुबह को लगाएं, दोपहर को लगाएं और रात को लगाकर सो जाएं. अगर आप रात को फेस वॉश स्किप कर देते हैं, यानी कि आपको ये लगता है कि भाई रात को फेस वॉश नहीं करेंगे, तो रात को फेस वॉश आप लाजमी किया करें, क्योंकि रात का फेस वॉश बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर देखा जाए ना तो जिन लोगों की ये आदत नहीं होती ना कि वो रात को फेस वॉश नहीं करते, तो उनके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, आप साफ सुथरे रहते हैं, रात को फेस वॉश करके सोते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है ना आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाती हैं. तो बिल्कुल जी, डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए रात को सोने से पहले, उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है. बिल्कुल जी, ये नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और सोने से पहले लगाइएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसके अंदर विटामिन ई बीट से माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है. आपकी स्किन पर जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाएंगे. और मजे की बात की ये सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए भी तैयार की गई है. सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगा सकते हैं और डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है. तो जनाब, बेफिक्र होकर लगाइए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए. उसके साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595-15-99-5

आपके लिए तो बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय करिए और साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन स्किन ब्यूटी शो। ओके सो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और जी अच्छा मोहम्मद ताहिर कहते हैं कराची से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल कहते हैं मोहतरमा आज कोई सॉन्ग हमारे भी नाम करना दिल करे तो। बिल्कुल जी मैं कोशिश करूंगी और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ मोहम्मद ताहिर भाई लिखते हैं नाइस यू शो, थैंक यू जी।

एक्चुअली तुफेल संजरानी के गाने की किसी ने फरमाइश कर दी थी, तो ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। और अनवर भाई लिखते हैं कि यदि चाय मेल है या फीमेल है, चाय फीमेल है जाहिर सी बात है, सब लोग कहते हैं मैंने चाय पीनी है, किसी ने ये कहा कि मैंने चाय पीना है तो ये फीमेल हुई। और बिलाल भाई कहते हैं कि जिंदगी खेल है, हार जीत होती रहती है, जो मुस्कुराते हुए हार जाए वही बाजी जीत लेते हैं। ओके, साउंड्स गुड। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। उसके अलावा है जी दर्दी दिल हमारे साथ। दर्दी दिल क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम चंदा, कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं दर्दी दिल? और मूसा कोरी कहती है गानो हलाए तो फिर संचरानी, बिल्कुल तमाम जो गानो हली वे।

ओके जी, हजार बार लिखते हैं, वैसे एक बात कहूँ, आपकी आवाज नाई से माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, हमेशा सदा सलामत रहे आप सिस्टर, बहुत शुक्रिया भाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या कहने वाले। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं, मैं खुद भी सेंसिटिव हूँ और मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन फेस वॉश लगाइए, ठीक है। और जवान मोहम्मद बच्चल चंबानी भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, प्रोग्राम जबरदस्त आहे, सलाम सभी दोस्तन के भाजू मोहब्बतू आहिनि, तव्हांखे चवंदा भली करे।

ओके जी हमारे साथ हैं ये, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं स्वीटी? सिस्टर मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं फजीला? यदि सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम, ओके जी सर आपको वेलकम करते हैं। ओके जी हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, हैप्पी गर्ल ने आज इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं और मतलब वो 3 साल की कसर आज के दिन मुझे लग रहा है निकाल रही है ऐसा है ना, बिल्कुल जी लग रहा है ऐसा है। चलिए जी आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कहाँ, यहाँ जो है लाड़काना कब तक रहने वाली हैं, हमेशा रहेंगी या फिर दोबारा चली जाएंगी? अच्छा ये विलेज गुलाम कासिम सोलंकी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंकी हैं। बाजी सिद्रा आप कैसी हैं? बाजी हमारे गाने नहीं चलाती हैं, आज से हम आपका शो सुनेंगे लेकिन आपको गाने की तकलीफ नहीं देंगे। और थैंक्स फ्रॉम नजीर सोलंकी, आसिफ सोलंकी, सलीम सोलंकी, तैयब सोलंकी एंड सरफराज सोलंकी। भाईजान बहुत शुक्रिया वैसे आपका और नाराज ना होइएगा, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके गाने लगाऊं लेकिन किसी ना किसी का तो रह ही जाता है तो बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई आप हमारे साथ हैं। अच्छा हैप्पी गर्ल की तरफ से सबको सलाम है जी, तो हैप्पी गर्ल आपको सबको सलाम दे रही हैं और उसके अलावा चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद हैं जी पैनल पर भी और उसके अलावा कहते हैं लास्ट सैडी लिंक में हो सके तो गाना लगाइएगा, मैं कोशिश क्या थी हिलाए बैठूं था। और उनके अलावा हैप्पी गर्ल कहते हैं सिद्धू जानी मेरी सिस्टर्स सादिया और अलीजे को भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सादिया अलीजे कैसी हैं? ओके जी मुन्नवर मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं बहना सिद्रा डी स्किन मीरपुर खास में मिल जाएगी। अच्छा कहते हैं रोजगार करके और घूम घूम कर चेहरा मिट्टी वाला हो जाता है, बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए और आप मीरपुर खास में जाइए, वहां से मालूमात लीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर से, अगर नहीं मिलती तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताया जाता है ना उसके ऊपर एक मरतबा रब्ता कीजिएगा, एक छोटा मैसेज छोड़ दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा, ठीक है तो आपको मिल जाएगी। ओके सो मुनव्वर भाई आप ऐसा कीजिएगा कि डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा।

तो ये हमारे साथ हैं सज्जाद अली जमाली, नवाब शाह से आपको वेलकम करते हैं. हैप्पी गर्ल कहते हैं सिरो जानी, शो आपका पहले की तरह सुपर डुपर है. थैंक यू सो मच मेरी जान. और ये हमारे साथ हैं सलाम डियर आरजे सिद्रा, खुश हो जो, आमीन, मिस्कीन, महबूब अली मल्हा, अब्दुल कादिर मल्हा, अब्दुल समद मल्हा, अजीम सिटी सकरण से आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी. मुनवर भाई कहते हैं कि बहन सिद्रा प्लीज 5 से 6 वाला प्रोग्राम भी मीपो खास में कनेक्ट करवाया करें. वैसे भी 5 से रात 11 बजे तक बैक टू बैक ही चलता रहता है. अरे भाई मीरपुर खास में बैक टू बैक चलता है वो ठीक अलग बात है एक, लेकिन ये है कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते ना तो वो कहाँ पर चलाएंगे, अगर किसी और स्टेशन पर चलाया जाए तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो बस ये लाड़काना में ही चलता है. अगर चला आगे जाकर तो हम मीरपुर खास भी कनेक्ट करवाएंगे, सखर भी करवाएंगे और मोरो भी करवाएंगे. बाकी अगर जो अदर स्टेशन से वो बोलेंगे भाई असा कहो डो कहो हाँ ताने भी कराईंदा जी ताने भी टेंशन नंबर 2 दिल वनी क्यों.

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, आबिद बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बिरोही भाई, आपको भी वेलकम करते हैं।

0: बदे सहारे परे।
1: ओके जी, बिलाल अली लिखते हैं कि बेशक लड़कियों में लाख बुराइयां होगी लेकिन वो मस्जिद से जूते तो नहीं चुराती। दिसो दिसो या कया ना कमच गाल। अच्छा सरफराज अली सोलंकी कहते हैं आपकी आवाज पसंद है, बहुत शुक्रिया जी।
0: खुदा नहीं पता मेरे चारों पासे गम।
1: अच्छा आमिर अली हमारे साथ कहते हैं आपका शो बड़ा सुपर डुपर है जैसे आप। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर सिटी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, थैंक यू। और उसके अलावा पोस्ट को आप लोगों ने अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए।

0: you ji, I love this song and I love this drama. ये एक ऐसा drama है जैसे देखने के बाद मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हर एक लड़की को ये drama देखना चाहिए. ओके जी, कफील ओएसटी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा. ओके जी, इसके साथ हैप्पी गर्ल कहती है, सिद्धू जानी अब हमेशा लाड़काना में रहूंगी, आपको बहुत तंग करूंगी, मैं चाहती हूँ मुझे तंग किया जाए. दिल खोल कर आप मुझे तंग कर सकती है. अच्छा चाचा, खबर पहुंची वेंदी आहे अॻिली जी, दिल नंढी आहे या दिल वॾी आहे, ठीकु आहे, सम्झो था. और उन खां अलावा जेको आहे सो असांजे प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक हली वियो आहे. चाचो अल्ताफ़ जी फरमाइश काफ़ी ॾींहनि खां असांजी लिस्ट में पेंडिंग हुई, सो मूं सोचो अॼु तव्हांजी फरमाइश बि ॿुधी वेठूं था. ऐं लास्ट में ही ट्रेक हलायो आहे. ओके जी, जाग जानी चाचू, ये गाना आपको रेडी किया जाता है.
1: मारो मत कड़ियां, ना कैद करो मैं खून, मारो.
0: और इसी के साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी करीब आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है. और साथ साथ आपको जरूर कहूंगी जनाब कि अभी आपने अगर हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए. और उसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोग वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें हर तरह के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, फेस वॉश है, साबुन है. और ऐसे ही आप लोग अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी आप लाजमी कीजिएगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव रहती है. आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता कि भाई नहीं प्रोडक्ट नहीं लगा पाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें ट्राई कीजिए. इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, आपको मजे आ जाएंगे.

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बहरीन उर्दन ने कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक मिसाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणाइण जी दावा। पासदारनि इंकलाब चयो आहे त हमलनि में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी अमलन कुझु महीननि दौरान थियल सफ़ारती कोशिशुनि खे मुकमल तौर ते तबाह करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमरीका अपने हुरमज़ में खुलियल मुदाख़लत कई, जंहिं सभु खिते में अदम तहफ़ुज़ पैदा थियो। आलमी बहरी कारोबार बि मुतासिर थियो। अमरीका अपने हुरमज़ बाबति ओमान में थींदड़ इजलास बि रोकियो।

खिते की मौजूदा सूरत हाल के पाकिस्तान पारा गणती जाहिर धुरियों के सबुर साफ करण मुतालबो बड़े तर्जमान है तो धुरू चिकतान के खात्मे लाए फौरी तौर से कदम खड़न इस्लामाबाद के मफामदी यादाशनामे अमल कर सफारतकारी के तरजीह दियन। फील्ड मार्शल सद आसिम मुनीर बिन डी दौरे से तुर्किया पहुंची वह फील्ड मार्शल तुर्किया के अस्करी कैद से मुलाकातू कह फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुंचने से फ्यानदार आदर भाव किया वो सिक्योरिटी जरन मौजूद फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी कैद से दिफाई शिकार से गाल बोल भी कह बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मारिज विया ऑपरेशन शाबान में जानम बिनो थींदो दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग 76 थी वियो पाक फौज एफ सी बलोचिस्तान पुलिस गडियल ऑपरेशन जारी सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजन के हवाई ए ज़मीनी कार्रवाइन ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे 5 जुलाई का ऑपरेशन शाबान ए बिन ऑपरेशन ज़रिए मारिज वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 114 थी वियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ हिगड़ी के दौरे से कतर पहुंची वो वजीर आजम कतर के अगुणे अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानिया के लाराने से शाही खानदान से ताजियत कह वफाकी आईन अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीर सुहारा में मोनाल रेस्टोरेंट किरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कालादम करार दे छोड़ो अदालत सीडीए मेट्रोपोलिटन सिटी जो अपीलों भी मंजूर कर वरतियों स्टे ऑर्डर भी खत्म अदालत के ट्रायल कोर्ट्स की दरखास्तों से जल्द फैसलो करने की हिदायत जस्टिस हसन अजहर रिजवी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में घणन नुकतन के सामू ना रखो वो अदालत केस दाखिल कर नजरसानी से बकावड़ कई असा के जज्बाती फैसलो ना करो। वरे वजीर कौमी विरसे बाबत वफाकी वजीर की तरह हेठ मजार कायद बाबत अहम इजलास कौमी विरसे के तहफुज ए सहकार के यकीनी बनाने से इतफाक इजलास दौरान मजार कायद ए भरपासे में कब्जों को नोटिस वरत वो लाइन्स एरिया ए खुदादाद भरसा कब्जा खत्म करण सिक्योरिटी यकीनी बनाने से इतफाक मुराद अली शाह चो तो मजार कायद लाइब्रेरी कौमी असासो है जिनकी हिफाजत सभी की जिम्मेवारी है वफाकी वजीर औरंगजेब खान चो तो वफाकी हुकूमत सकाफती विरसे के तहफुज लाए पुरजम है। एमक्यू मगवान ए वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल जा पार्टी सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के इल्जाम मुस्तफा कमाल जो तो वसीम अख्तर की गवर्नर सिंध तौर मुकर्रीय के खालिद मकबूल सदीकी रोकराया फैसलो किया है मुल्क की मौजूदा हुकूमती मॉडल के तब्दील कर अख्तियार वसीला शहर के दर तक पहुंचाया वा। मीरपुर खास में पुलिस के कूड़े मुकाबले में मायरल डॉक्टर शाहनवाज कतल के बुधरी सिंध हाई कोर्ट जवाबदार ने केस खत्म करने की दरख्वास्त रद्द कर छी अदालत फैसले में चाहिए तो एफआईए के अड़न केसन में नई एफआईआर दाखिल करने जो अख्तियार न कानूनी गलती से जवाबदार के फायदो न सके अदालत रुगो जांच मुंतकिल करने की हिदायत कई हुई नई एफआईआर दाखिल करने जो हुक्म न दिनो हो एफआईए के कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एक्ट तहत नई एफआईआर दाखिल करने जो अख्तियार हासिल ना है। एफआईए वाले केस जो चालान पिण अदालत में जमा थी चुको है मामलो कानूनी तरीके की गलती है जैसे दुरुस्त कर सकते तो जांच कड़ इदारे की कानूनी तशरी में गलती के बुनियाद जवाबदार के फायद न तो दई सके एफआईए के दाखिल कल केस के पुलिस केस तौर तस्वुर किया वे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स के पीपीएच में जम करने खिलाफ एहतजाज हैदराबाद टंडो अलयार उमरकोट जकमबाग बिन शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारा एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर्स तो पीपीएच में जम करने वो फैसलो कबूल ना लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर दिनों वे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, तव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए तव्हांखे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी की आदत के खराब मानू करा ले छो तय थल मायदों पर टोड़ने का इल्जाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मस जो कंट्रोल हासिल कर रहा आयु आबनाए हुर्मस जहा सरपरस्त बणबासी आबनाए हुर्मस की निगरानी एवज अमरीका के मुआवजो भी मिलो।

0: अबना हुरमस्तान अमरीका ए ईरान विच में शुरू थियल छेकतान खत्म न थी बिन्हीं मुल्कन जो एक बेते मुआहदे के भंग करण जो इल्ज़ाम अमरीका के ईरान की फौजी ताकन ए दिफाई निज़ाम ते बम्बारी मेज़ाइल ए ड्रोन साइट्स तबाह करण की भी दवा ईरान जाबे अमरीका ते जवाबी वार बहरीन कुवैत ए उर्दन में अमरीकी अड्डन ते मेज़ाइल ए ड्रोन हमला किया वया बहरीन उर्दन ए कुवैत पारा हमलन की तस्दीक मेज़ाइल ए ड्रोन फिजा में नाकाम बनाने की दवा खिते के कें भी मुल्क से हमलो ना है कयो न कंदासी तेहरान जो दिफाई कार्रवाई अमरीकी अड्डन ए थाकन खिलाफ होंद ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई चयो है ता खिते जा मुल्क ईरान खिलाफ पांजी सरजमीन इस्तेमाल थियण न डेन पाड़ेसरी ईरान खिलाफ फौजी जारियत में शामिल थिया ता ईरानी फौज जो जायज हदफ हूंदा खिते की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान पारा गणती जाहिर धुरन के सबुर ए सहप करण जो मुतालबो परदेही तर्जुमान चयो है धुरियो छिकताण के खात्मे लाए फौरी तौर से कदम खणन इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त नामे ते अमल कंदे सफारतकारी के तरजीह दें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिन ढीह के दौरे ते तुर्किया पहुंची वो फील्ड मार्शल तुर्किया के अस्करी क्यादत से मुलाकातू कंदो फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुंचने ते शानदार आदर भाव कयो वो सिक्योरिटी जरिए मौजिब फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क्यादत से दिफाई सहकार से भी गाल बोल कंदो बलोचिस्तान में ऑपरेशन शेबान जारी वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मारजी वया ऑपरेशन शेबान में जन्म भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजमू अंग वधी 76 थी वयो पाक फौज एफसी बलोचिस्तान ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी सिक्योरिटी जरियन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजन के हवाई ए जमीनी कार्रवाई जरिए निशानो बणायो पियो वञे 5 जुलाई का ऑपरेशन शेबान ए बियन ऑपरेशन जरिए मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग वधी 114 थी वयो आहे वजीर आजम शाहबाज शरीफ की कतरी अमीर शेख तमी बिन हमद अल सानी से मुलाकात अगूणे अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के लाडाने ते ताजियत मुलाकात दौरान अगूणो वजीर आजम नवाज शरीफ वफाकी वजीर अता तारण ए बया भी मौजूद हुआ वजीर आजम खिते की अमुन ए तरक्की लाए मरहूम की कोशिश की वाखाण कई
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक तेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

अमेरिका जल्द आबनाए हुर्मुज जो कंट्रोल संभालींदो जंहिं बाद आबनाए हुर्मुज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां मुआवज़ो वरितो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते मुआदे जी भंजकड़ीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुननि 10 भेरा ई मुआदो टोड़ियो आहे। आबनाए हुर्मुज जी हिफ़ाज़त करण जो अमरीका मुआवज़ो वठंदो। ॿियूं क़ौमूं अमीर आहिनि, केरु असां मां उमेद न रखे त खेसि मुफ़्त में आबनाए हुर्मुज मां गुज़रणु ॾिनो वेंदो। जंग में ईरान खे बर्तनाक शिकस्त ॾिसणी पइजी रही आहे।

आबनाए हुरमस्तां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तमु न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जे ईरान जी फ़ौजी ताक़तुनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम ते बम्बारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक। मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणाइण जी दावा। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो, न कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कारवायूं अमरीकी अॾनि ऐं ठाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾिनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर। धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते क़दम खणनि। इस्लामाबाद जे मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारी खे तरजीह ॾिनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आदर भाव कयो वियो आहे। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी। वधीक 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शहबान में जनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग 79 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ऑपरेशन दौरान ख़ारजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइयुनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 117 थी वियो आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जी क़तरी अमीर शेख तमी बिन हमद अल सानी सां मुलाक़ात। अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानी जे लाॾाणे ते ताज़ियत। मुलाक़ात दौरान अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। वज़ीर आज़म खिते जी अमुन ऐं तरक़ीअ लाइ मरहूम जी कोशिशुनि जी वाखाण कई। वफ़ाक़ी आइनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहावा में मोनाल रेस्टोरेंट किराइण वारे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कलदम करार ॾेई छॾियो। अदालत CDA ऐं मेट्रोपोलिटन सिटीअ जूं अपीलूं बि मंज़ूर करे वरितियूं। स्टे आर्डर ख़तमु। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्तनि ते जल्द फ़ैसिलो करण जी हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फ़ैसिलो नाहे करणो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि वलीका इस्पताल में रिपोर्ट थींदड़ HIV केसिस बाबति इजलास। CCG मातहत वलीका इस्पताल में HIV केसिस बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ॿुधायो वियो त वलीका इस्पताल में 78 ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी चुकी आहे। जांच खां पोइ कोताही कंदड़नि केतिरनि ई ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं शुरू कयूं वियूं आहिनि। वॾे वज़ीर पारां वलीका इस्पताल में HIV केसिस ते ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो ऐलान। वॾे वज़ीर

0: मेरा भतीजा है डॉक्टर आकाश, उसकी 28 साल उम्र है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जना हॉस्पिटल में। बैंक अलाबीब में जैसे गाड़ी से उतरा है तो उसको तो डाकुओं ने उसको गोलियां मारी है, उसी टाइम वो इंतकाल कर गए। ये इतना जुल्म नाइंसाफी, ये मैं पुरजोश अपील करूंगा खासतौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, ये जो है ना इतनी नाजायजी और ये इतने डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर मारे जाएंगे तो ये कैसे चलेगा। खास करके आईजी सिंध को, जब तक ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और हमें इंसाफ तक नहीं मिलेगा तब तक हम एहतजाजन हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम बाड़ी रख के हम एहतजाजन पूरी मार्केट ही बंद करेंगे।
1: कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ रोड़ी वासी डॉक्टर बैंक बाहर ही कतल। हथियारबंदन बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ डॉक्टर आकाश का बैंक बाहर ही फुरलुट कई मजामत करने ते फौरन डॉक्टर आकाश के गोली हणी कतल कर छो। 25 लख रुपया फुरे फरार। मकतूर डॉक्टर के वारसन जो 3 तलवार से लाश रखी धरणो हणन जो चिताव। जवाबदार के गिरफ्तार करण जो मुतालबो। फुर मजामत डॉक्टर के कतल जो आईजी सिंध में।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।

0: ईद नमाज़ पढ़ी केॾा पिया वञो ॿार असां दोस्तनि खे बि गले न पिया लायो छा ॻाल्हि
1: उस्ताद जान बुरड़ा साहब सभी ईद बि मूं रोअंदे गुज़ारी आहे साईं दुआ कर त हिन ईद ते मेलो थिए पंहिंजे महबूब सां
0: हा यार तूं चए पियो त मुंहिंजो महबूब मुंहिंजे रोई व्हाट्सअप ते वीडियो कॉल ते पैगाम मोकिलियो उहो त ॿुधाए
1: हा उस्ताद जान बुरड़ा साहब सही पिया चऊं अमी ॿुधो हूंदो आशिक मजबूर आहे

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुम्मे, छंछर, आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: मां गुजरंदड़ बहरी जहाजन का ईरान के टोल से एतराज कंदड़ अमेरिका जो अबने हुरमज मां गुजरंदड़ जहाजन का 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फौज के बीहर ईरान के बहरी नाकाबंदी करने जो भी हुक्म दे छो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त अबने हुरमज जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभालींदो, जैं बाद अबने हुरमज मां गुजरंदड़ जहाजन के 20% फीस डेणी पवंदी। कहलाए भी अबने हुरमज मुफ्त में न हों, तेहरान से 10 भेरा मुआदो किया है, उन 10 भेरा ही मुआदो टोड़ो है। अमेरिका के अबने हुरमज जो कंट्रोल संभालन न दींदासी, ईरानी फौज जो सदर ट्रंप के जवाब। पास्तारान इनकलाब चयो है त अबने हुरमज में मदाखलत खिते की सलामती के खतरे में विझी छो है। अमेरिका के अबने हुरमज जो कंट्रोल संभालण की इजाजत न दिनी है, न दींदासी। तकरार वध्यो त जंग की शोला बेन मुल्कन ते पखड़ी सकन था।

कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ रोड़ी वासी डॉक्टर बैंक बाहरा कतल हथियारबंदन बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ डॉक्टर आकाश का बैंक बाहरा फुलुट कई मजामत करण ते फौरन डॉक्टर आकाश के गोली हणी कतल कर छो 25 लख रुपया फुरे फरार मकतूल डॉक्टर के वारसन जो तीन तलवार से लाश रखी धरणो हणन जो चिताव जवाबदार के गिरफ्तार करण जो मुतालबो फुर मजामत डॉक्टर के कतल जो आईजी सिंध नोटिस वरतो रिपोर्ट तलब

मेहर वेझो ज़ाल खे कारण इल्ज़ाम हेठि क़त्ल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार, ॾोह जो एतिराफ़। ॻोठ लौंग महेसर में 15 ॾींहं अॻु जवाबदार शाज़ेब उर्फ़ बेबू महेसर ज़ाल खे क़त्ल कयो हो। औरत जे सहुरे ख़ैर मोहम्मद बि गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। जवाबदार पारां ज़ाल खे कार ऐं इल्ज़ाम हेठि क़त्ल करण जो एतिराफ़। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मिटी जे तूफ़ान सां गॾु हल्की बरसाति। भान सईदाबाद, गढ़ी खैरो, राधन समेत ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। मौसम ख़ुशगवार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000

ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां ईरान जे टोल ते एतिराज़ कंदड़ अमरीका जो आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौज खे ॿीहर ईरान जे बहरी नाकाबंदी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभालींदो, जंहिं बाद आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। कंहिं लाइ बि आबनाए हुरमज़ मुफ़्त में न हूंदो। तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुननि 10 ई भेरा मुआदो टोड़ियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल संभालण न ॾींदासीं, ईरानी फ़ौज जो सदर ट्रंप खे जवाब। पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुरमज़ में मदाख़लत खे तेजी सलामतीअ खे ख़तरे में विझी छॾियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल संभालण जी इजाज़त न ॾिनी आहे ऐं न ॾींदासीं। तकरार वधियो त जंग जे शोला ॿियनि मुल्कनि ताईं पखिड़िजी सघनि था।

आबनाए हुरमत सां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जी ईरान जी फ़ौजी थाकनि ऐं दिफ़ा वारे निज़ाम ते बमबारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा पिया अमरीका ते जवाबी वार, बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला कया विया। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक, मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणण जी दावा। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो ऐं नई कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कारवायूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जी ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते कदम खणनि। इस्लामाबाद जी मफ़ामती याददाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारी برطانیہ جو ایران جے پاسداران انقلاب تے پابندی لگائن جو فیصلو برطانیہ جے گھرو وزارت پاراں تصدیق۔ اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دا رائٹ ایں روس جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڈل تنظیمن جے فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیامنٹ ڈاں موکلیو ویو آہے۔

बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक 8 खारजी दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन शाबान में जहनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजमूई अंग वधी 79 थी वियो। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग वधी 117 थी वियो आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आधार भाव कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदो। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जी कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां मुलाक़ात। अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानी जे लाॾाणे ते ताज़ियत। अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर अताताड़ ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। वज़ीर आज़म खिते जी तरक़ीअ लाइ मरहूम जी कोशिशुनि जी वाखाण कई। वज़ीर आज़म कतर जे दौरे बाद वापसि ॾेह पहुची वियो। वफ़ाक़ी आइनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहावा में मोनाल रेस्टोरेंट किराइण वारे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कल अदम करार ॾेई छॾियो। अदालत सी डी ए ऐं मेट्रोपोलिटन सिटीअ जूं अपीलूं बि मंज़ूर करे वरितियूं। स्टे आर्डर ख़तम। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्तनि ते जल्द फ़ैसिलो करण जी हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फ़ैसिलो नाहे करणो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि वलीका इस्पताल में रिपोर्ट थींदड़ एच आई वी केसिस बाबति इजलास। सेसी जे मातहत वलीका इस्पताल में एच आई वी केसिस बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ॿुधायो वियो त वलीका इस्पताल में 78 ॿारनि में एच आई वी जी तस्दीक थी चुकी आहे। जांच खां पोइ कोताही कंदड़ केतिरनि ई ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कई वई आहे। वॾे वज़ीर पारां वलीका इस्पताल में एच आई वी केसिस ते ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसीअ जो ऐलान। वॾे वज़ीर चयो त सिहत जी सहूलियतुनि जी फराहमीअ में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। लाॻापियल ज़िमेवार आफ़िसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई मेरिट जे बुनियाद ते जल्द मुकमल कई वञे।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जना हॉस्पिटल में, बैंक अलाबीब में जैसे गाड़ी से उतरा है तो उसको तो डाकुओं ने उसको गोलियां मारी है, उसी टाइम वो इंतकाल कर गए। ये इतना जुल्म, नाइंसाफी, ये मैं पुरजोश अपील करूंगा खासतौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को। ये जो है ना इतनी नाजायजी और ये इतने डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर मारे जाएंगे तो ये कैसे चलेगा। खास करके आईजी सिंध को, जब तक ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और हमें इंसाफ तक नहीं मिलेगा तब तक हम एहतजाजन हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम बाड़ी रख के हम एहतजाजन पूरी मार्केट ही बंद करेंगे।
2: कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में कत्ल कर डॉक्टर आकाश के वारसन जो तीन तलवार से लाश रखी धरणो, कत्ल में मुलविस जवाबदार के गिरफ्तार करने मुतालबो। मकतूल डॉक्टर के वारसन मूजिब आकाश के ढीह डिठे बैंक सामू सरियाम कत्ल किया। डोहारन के पुलिस जो खौफ भी ना रो, डॉक्टर आकाश जहा कतल गिरफ्तार किया वन।

आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां ईरान जे टोल ते एतिराज़ कंदड़ अमरीका जो आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौज खे ॿीहर ईरान जे बहरी नाकाबंदी करण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभालींदो, जंहिं बाद आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। कंहिं लाइ बि आबनाए हुर्मुज़ मुफ़्त में न हूंदो। तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुननि 10 ई भेरा मुआदो टोड़ियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल संभालण न ॾींदासीं, ईरानी फ़ौज जो सदर ट्रंप खे जवाब। पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुर्मुज़ में मदाख़लत खिते जी सलामतीअ खे खतरे में विझी छॾियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल संभालण जी इजाज़त न ॾिनी आहे ऐं न ई ॾींदासीं। तकरार वधियो त जंग जी शोला ॿियनि मुल्कनि ते पखिड़िजी सघनि था।

0: आबनाए हुरमस सां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी। अमरीका जे ईरान जी फ़ौजी थाकनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम ते बमबारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीकी हमलनि में 4 शहरी शहीद थिया आहिनि। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो, न ई कंदासीं। तेहरान जूं दिफ़ाई कार्रवाइयूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी
1: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time...
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।